तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लागि अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी पोखरा सम्पर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नम्बर 061-570-736 98-560-2325 98-086-35-480 साथै आईएलएस पीजी का कक्षाहरू विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालिम का साथ प्रदान गरिन्छ।

0: हेलो पोखरा बीवाईडी सर्विस को सुपीरियर र सिन्सियर सर्विस को साथ में अब पोखरा में पनि बीवाईडी सर्विस स्टेशन सुचारू हुँदै छ। यो सँगै बीवाईडी थ्री इयर्स फैसिलिटीज सेल्स सर्विस एंड स्पेयर्स को सुविधा अब पोखरा में पनि उपलब्ध हुने छ। प्लीज डू विजिट अस एट बुद्ध चौक 10 पोखरा।
1: आयो है मासु, ताजा ताजा मासु।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 5 0 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: हेलो
2: हेलो क्रिस्पी, सुन न, घरमा चाहिने खाद्यान्नको सामान सकिएको छ, यी सम्पूर्ण सामान किन्न कता जाने होला?
3: किन यता उता गर्नु पर्यो? पोखरा 7 मासबारमा रहेको पीएसटी टेरसमा जाऊ न, त्यहाँ त गुणस्तरीय सामान सस्तो र सुफत मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: सम्पर्क पीएसटी ट्रेडर्स पोखरा 7 मासबार श्रीकृष्ण माविदेखि बुलाउँदी लेक साइड जाने बाटोको बीचमा प्रोप्राइटर टेकराज पौडेल मोबाइल नम्बर 9860309362 9560334 32। खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: बाकेलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार चिप्पे ढुंगा पोखरा सम्पूर्ण किसिम का खेलकूद का सामग्री होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिने ठाउँ विभिन्न देश का जर्सी सुपथ मूल्य में पाइन्छ आफूलाई मन पर्ने देश को जर्सी का लागि सम्झनुहोस् बाकेलाल स्पोर्ट्स प्रोप्राइटर मोहन कुंवर संपर्क 98116 65983 98555 समझनु सही बाकेलाल स्पोर्ट्स बुद्ध विशाल बजार
1: आयो है मासु ताजा ताजा मासु दोस्ती टू मिट सपमा

0: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक डिजाइन का गरगहनाहरू बिना रसायन ग्यारेन्टी का साथ तयार गरिन्छ। साथै पुराना गरगहनाहरू साक्षर का साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
1: सम्पर्क गुप्ता कालिका समक्ष सुनसादी पसल, बागलुङ बस पार्क दुई पोखरा, प्रोपाइटर गणेश बहादुर सुनार, 0165339904, म्यानेजिङ डाइरेक्टर लोकबहादुर सुनार लोकेश, 98462899।
2: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
3: वेस्टल फोन ले आयो नया जम्बो कॉम्बो ऑफर, अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस, 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस।
2: अब सबैको लागि वेब सर्फर, भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस, देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट, आईपीटीवी, डिजिटल टीवी, कर्पोरेट इंटरनेट, इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू को लागि वेब सर्फर नेपाल, अरू भन्दा फरक, सबै भन्दा विश्वसनीय।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050557 मुसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के शहर पोखरा में।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705505508 9705505507 मुलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर भरपर्दो विश्वास दिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरुभन्दा फरक सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np
4: अब रेडियो प्रस्तुता उद्घोषण कला र नेतृत्व क्षमता वृद्धिका लागि सम्झनुहोस् रेडियो सफलता 103.4 MHz लाई तालिम सञ्चालन भइरहेको छ सम्पर्क 061-452-966 061-455-966 र मोबाइल नम्बर 9846-00851

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852110504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

हेलो पोखरा बीवाईडी सर्विस को सुपीरियर सिंसियर सर्विस को साथ में अब पोखरा में बीवाईडी सर्विस स्टेशन सुचारू हुँ देछ। यो संगे बीवाईडी थ्री इयर्स फैसिलिटी सेल्स सर्विस एंड स्पेयर्स को सुविधा अब पोखरा में उपलब्ध होने। प्लीज डू विजिट अस एट बुद्ध चौक 10 पोखरा।

0: Ciao, ridici un lì, sai.
1: You get
2: what happened?
1: I was telling you.
0: Okay, thank you. Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया नहीं, बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट हुआ मेरे शो में मेरा साथी बन गया, पर अब शायद इस वॉइस नोट में मेरे साथ

पानी। तू खुदा बदमाश तेरे लाके में छोरे तेरे जैसे पड़े फेड़ मेरे खाते में छोरे मरे जाते में लाने की कोशिश न कर मर जा पड़ेगा गड़े घाटे में छोरे।

0: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
1: सुन्न मन लायो।
2: मेरी राखी पहनता है ना तू, तो मेरी प्रोटेक्शन में है। तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी, कभी भी।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुन्सरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050507 मलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589828
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np
4: अब रेडियो प्रस्तुता उद्घोषण कला र नेतृत्व क्षमता वृद्धिका लागि सम्झनुहोस् रेडियो सफलता 103.4 MHz लाई तालिम सञ्चालन भइरहेको छ सम्पर्क 061-452-966 061-455-966 र मोबाइल नम्बर 9840-00851

0: 爸爸哪里白茶菜的爸爸哪里哦让我卡里咖啡的我给茶里哦爸爸为你高嘞该努力哦爸爸为你高嘞该努力哦爸
1: 爸为你高嘞该努力哦
0: नमस्कार वो आलग करी कपड़े आरोही ने छुट्टे उल्टा रेडियो सफलता
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज
3: नमन लाइव

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050508 97055055007 मुसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: বাকিলাল স্পোর্টস মুগ্ধ বিশাল বাজার চিপেজুঙ্গা পোখরা সম্পূর্ণ কিসিমকা খেলকুদকা সামগ্রী হোলসেল তথা খুদ্রা বিক্রি গরিনেছ। বিভিন্ন দেশকা জার্সিহরু সুপথ মূল্যমা পাইন্ছ। আপুলাই মন পরি দেশকো জার্সিকা লাগি সম্ঝন হোস বাকিলাল স্পোর্টস প্রোপ্রাইটর মোহন কুয়ার। সম্পর্ক 9811562983 9855582855। সম্ঝনুস হই বাকিলাল স্পোর্টস মুক্ত বিশাল বাজার।
1: हेलो पोखरा बीवाईडी सर्विस को सुपीरियर र सिन्सियर सर्विस को साथ मा अब पोखरा मा पनि बीवाईडी सर्विस स्टेशन सुचारू हुँदै छ। यो सँगै बीवाईडी 3 इयर्स फेसिलिटी सेल्स सर्विस एन्ड स्पेयर्स को सुविधा अब पोखरा मा पनि उपलब्ध हुने छ। प्लीज डू विजिट अस एट बुद्ध चौक 10 पोखरा।
2: तपाईको भोक लाग्दाको साथी मनसरा ताज चिकन बिरानी। घरमा होस् या अफिसमा, मिटिङमा होस् या जमघटमा, अनलाइनमै अर्डर भनेकै ठाउँमा डेलिभरी। मनसरा ताज।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पो।

0: सके ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दै सके ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदे
0: राम्रोसँग ल गाइदे
2: आते
0: मुच्छे

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852510504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट स्टल पर ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लागि वेब सर्फर भर पर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
2: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरामा।

0: स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लगी अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा संपर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नंबर 0165707636 9850202325 9806535480 साथ ही आईएस र पीजी का कक्षा विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालिम का साथ प्रदान गरिन्छ।
1: हेलो पोखरा बीवाईडी सर्विस को सुपीरियर र सिंसियर सर्विस को साथ में अब पोखरा में बीवाईडी सर्विस स्टेशन सुचारू हुँदै छ। यो सँगै बीवाईडी थ्री इयर्स फैसिलिटीज सेल्स सर्विस एंड स्पेयर्स को सुविधा अब पोखरा में उपलब्ध हुने छ। प्लीज डू विजिट अस एट बुद्ध चौक 10 पोखरा।
2: आयो है मासु, ताजा ताजा मासु दोस्त।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705550057 मनसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर हर पर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np